ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026, सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस और उसके बाद में भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना।

9:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज आप सुनेंगे महेंद्र सिंह जी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर होगा गाने नए तराने नए। युवाणी कार्यक्रम अपने तय वक्त पर शाम 5 बजे।

महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेगी महिला जगत 5:30 पर, माटी के स्वर कार्यक्रम होगा 6:20 पर और किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी शाम 7:00। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 7:30 पर। ये थे कुछ खास कार्यक्रम आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले, सुबह के 9:00 वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। श्री शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पीएम के दौरे के दौरान करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं दिया

0: रहेगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी आज पचपदरा आ रहे हैं। वे पीएम विजिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं रिफाइनरी के पास एसपीसीएल के नवीन आउटलेट का शुभारंभ भी करेंगे। बंसीलाल, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। विभिन्न प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कल जयपुर में सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दत्त ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपने अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों और कॉन्फेड के बिक्री केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए जून महीने में 75 लोगों को अदालत से सजा दिलवाई है। वहीं 1870 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने बताया कि झूठी शिकायतों के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत में ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस अवधि में नागौर जिले में सबसे ज्यादा 292 मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जबकि जयपुर ग्रामीण और अलवर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में सवाईमाधोपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले की 1584 नवजात बालिकाओं के खातों में 39,60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले ने योजना के तहत 98% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।
2: हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में

0: जो डिलीवरी होती है प्राइवेट जो हमसे जुड़े हुए हैं एचजीएसवाई या किड गंगापुर सिटी में, उनमें जो डिलीवरी होती है उसका हम पर डे एनालिसिस करते हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से कितनी बच्चियां पैदा हुई, कितनों का भुगतान हो गया, कितना नहीं हुआ है। वो डेटा हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल का 5, 7, 10, 20 से ज्यादा का नहीं होता। मेजर जो गैप है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी मुंडेरा है, भंडार है, जहां हमारी ज्यादा डिलीवरी होती है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल वहां से निकल गया। फिर हम उसका सब सेंटर वाइज बाइफरकेशन करते हैं किस सब सेंटर की ये डिलीवरी है। दस्तावेजों के अभाव की वजह से किसी का भुगतान रुकता है तो वो दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं।
1: प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाके मॉनसून की बारिश से भीगे हैं। कल मॉनसून के प्रवेश के साथ ही चौमासे की बेहतर शुरुआत हुई, कई स्थानों पर झमाझम में ही बरसा। राजधानी जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। डूंगरपुर में सुबह से ही बरसात हो रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर और गुलापुरा क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज 12 कोटा और झालावाड़ के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट बताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है।
2: आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
1: अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। 9:10 हुए हैं, ये सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे

अनमें अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। यह है पहली पेशकश, आवाज़ मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की है।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: लीजिए सुनिए वंदना में ये अगला कलाम, जिसे गाया है अजीज नाज़िम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए में महेंद्र सिंह राठौर से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री महेंद्र सिंह राठौड़, जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय नागौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं और श्रम संबंधी और क्रिमिनल संबंधी केसेस आप देखते हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो चार नए लेबर कोड अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में। राठौड़ साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: राठौड़ साहब, अभी हाल ही में जो सरकार ने चार नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत कम लोगों को अभी बहुत कम जानकारी है और कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन भी है, जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो चार नए श्रम कानून है, सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी इन नए श्रम कानूनों को लाने की पुराने कानूनों के स्थान पर, और ये कब से लागू है?
2: हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये श्रम कानून 21 नवंबर 2025 से लागू हुए हैं सर, और इन कानूनों

0: को लाने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि पहले के जो कानून थे वो बहुत ही विस्तृत रूप में थे, जो कि 29 कानून थे जिनको हर राज्य के लिए इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल था और अलग अलग राज्यों के लिए भी कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में परेशानी होती थी। इसी के साथ इन कानूनों को मर्ज करके केवल 4 कानूनों में बदल दिया गया है ताकि उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो और इन कानूनों को सरलीकरण रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि कि आसानी से इनको लागू किया जा सके। साथ ही पहले के जो कानून थे वो बहुत पुराने टाइम से बने हुए थे, जो कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बने हुए थे और आज के समय में जो परिस्थितियां हैं जो चेंज हो चुकी है, इस कारण इन कानूनों को कुछ बदल करके और एक पूरे विस्तार रूप से फैले हुए कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके और पूरे देश के अंदर जो आसानी से लागू किया जा सके, इस कारण से इन कानूनों को लाने की आवश्यकता पड़ी।
1: जी, तो ये 4 श्रम जो कानून है क्या है, नए कौन से हैं, क्या नाम है इनका?
0: ये है सर वेज कोड 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 4 नए कानून हैं जिनको 21 नवंबर 2025 से संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया गया है।
1: तो इन कानूनों को लागू होने के बाद हम कहें कि जो श्रमिक वर्ग है, जो भी श्रमजीवी हैं, उनको क्या इससे लाभ होगा, क्या इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जिनके लिए ये कानून लाया गया है, जिनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि श्रमिकों के लिए, तो उसको लेकर क्या विशेष प्रावधान आप बताना चाहेंगे कि जो कि हम कहें कि उल्लेखनीय है?
0: बिल्कुल सर, इसके अंदर बड़े रूप से, मोटा मोटी रूप से मैं आपको बताऊं तो कि जो भी श्रमिक थे, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिसके अंदर उनको कोई फिक्स न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अंदर अब इस प्रावधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि हर श्रमिक को कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनको समय पे वेतन मिले। हर श्रमिक की यही परेशानी होती थी कि या तो उसे कंपनी से या कहीं भी जहां वो काम करता है उसे समय पे वेतन नहीं मिलता था। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई डेली बेसिस वेतन पे काम कर रहा है तो उसको डेली टू डेली उसका शिफ्ट खत्म होते ही उसको वेतन दिया जाए। अगर कोई वीकली बेस पे शिफ्ट पे काम कर रहा है तो उसको वीकेंड के लास्ट डे पे उसको वेतन दिया जाए, और अगर कोई मंथली बेस पे काम कर रहा है तो उसको उस महीने के खत्म होने के नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख से पहले पहले उसको वेतन दिया जाए, ताकि उसको अपनी आम जो आजीविका है उसको चलाने के लिए ज्यादा परेशानी ना करनी पड़े। साथ ही साथ जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग की सेफ्टी का भी ध्यान दिया गया है। पहले महिलाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके अंदर वे नाइट शिफ्ट के अंदर भी काम कर सके, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है, उनको परमिशन दी गई है कि वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। साथ ही उनकी जो सुरक्षा है उसका भी समुचित प्रबंध किया जाए जिसके बाद वो नाइट शिफ्ट के अंदर भी काम कर सकती है। और आपको बता दूं सर कि पहले कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, अब ये भी कर दिया गया है कि हफ्ते के अंदर 48 घंटे कोई भी श्रमिक है वो 48 घंटे ही काम करेगा। उसके अलावा अगर उससे ओवर टाइम कराया जाता है तो ओवर टाइम के लिए उसे दुगुने वेतन से पेमेंट अदा किया जाएगा।
1: जी, और कोई प्रावधान इसके जो कि श्रमिकों के हित में हो, खास तौर से कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ जो श्रम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ उनका कहना है कि शायद जो हड़ताल का उनका अधिकारी है उस पर कुछ उनको लेकर कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कानून है वो श्रम विरोधी हैं या किसी प्रकार से श्रमिकों के हड़ताल या जो उनके अधिकार हैं उन पर रोक लगाते हैं?
0: जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये भी। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है कि श्रमिकों को हड़ताल का अवसर नहीं मिलेगा या उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसके अंदर श्रमिकों के साथ साथ जो कंपनियां हैं और जो संगठित वर्ग है जो उनको श्रम के लिए उनको रखता है, उनके भी हितों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए पहले जब भी कोई श्रमिक हड़ताल करेंगे तो उनको पहले कंपनी को सूचित करना पड़ेगा। जो नियम एवं प्रक्रिया तय की गई है जिसके अंदर उन्हें पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वे हड़ताल भी कर सकते हैं। हड़ताल पे ऐसा कोई नहीं है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नियम एवं कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि वो एक नोटिस से सूचित करे पहले कंपनी को, उसके बाद वो हड़ताल कर सकते।
1: यानी कि वो जो हड़ताल, कई बार श्रमिक ये भी देखा जाता था कि मनमाने तरीके से जो श्रमिक संगठनों के जो पदाधिकारी थे, वो जो पदों पर बैठे हुए थे ट्रेड यूनियन के, वो अपने मनमर्जी से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और जो है श्रमिकों को बहका कर और हड़ताल जैसा माहौल पैदा कर देते थे।
0: बिल्कुल,
1: या हम कहें कि मालिकों को भी वो एक तरह से ब्लैकमेल करते, तो वो चीजें रेगुलराइज हुई हैं, मतलब उस
0: हाँ
1: नीचे
0: बिल्कुल सर, उन
1: उस
0: चीजों
1: पर
0: को खत्म
1: कुछ
0: करने
1: एक
0: के लिए भी,
1: रिस्ट्रिक्शन।

0: हितों का ध्यान रखा गया है
1: बिल्कुल
0: इसमें,
1: सर, बिल्कुल।
0: ताकि एक उचित और अच्छा एक वातावरण पैदा किया जा सके जिसमें कि कोई भी संस्थान अपनी किसी फैक्ट्री को या किसी भी अपनी इकाई को लगाने के लिए भी को एक माहौल मिले अच्छा, और जो श्रमिक हैं, जो वहाँ वर्कर्स हैं जो काम करेंगे, उनको भी एक सुरक्षा मिले। इसके अलावा देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात थी अब तक वो ये थी कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार थे, असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी और उनकी अपनी अपनी मजबूत संगठन थे, तो अपनी मांगे मनवा लेते थे, उनका शोषण का कोई इतना अवसर नहीं था। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जिनका कोई संगठन नहीं था और जो बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं है, समूह में नहीं है, उनके लिए कुछ मतलब इस तरह के सुरक्षा के प्रावधान थे, कुछ उनकी वेतन की गारंटी और कुछ मतलब उनको उनका शोषण काफी होता था। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इन नए श्रम कानूनों से क्या फायदा है?
1: बिल्कुल सही सर। असंगठित क्षेत्रों को जो श्रमिक है उनको पहली बार इन कानूनों के अंदर इस ऐसा प्रावधान किया गया है। पहले केवल संगठित क्षेत्र के ही श्रमिकों को इसके अंदर कानून के अंदर ऐसा प्रावधान था कि उन्हें कुछ रिलीफ मिले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि असंगठित क्षेत्र जो दिहाड़ी मजदूर भी है या गिग वर्कर्स है, जैसे जोमेटो, स्विगी, अबर, ओला, ऐसी कई कंपनियों के अंदर काम करते हैं, उनके हितों को भी ध्यान रख करके ये कानून लाया गया है, ताकि उनको भी जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो जो बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट्स इन असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी मिले। साथ ही सर आपको बताना चाहूंगा कि अपने देश के अंदर लगभग 60 करोड़ से ज्यादा श्रमिक है, जिनमें से 90% 90% से अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों से आते हैं। केवल पहले 10% जो संगठित क्षेत्र थे उनपे ही ये कानून लागू होता था, लेकिन अब जो 90% के अंदर जो भी मजदूर आते हैं, काम करते हैं, उनके हितों को भी ध्यान रखकर के इस कानून को लाया गया है सर।
0: जी, तो ये इससे हम जो नए कानून आए हैं उनसे हम जो श्रमिकों के बेहतर भविष्य की कोई कामना कर सकते हैं, उनके कल्याण की कामना कर सकते हैं, और अगर उनके हित के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उन पर कोई आँच आती है, कोई चोट पहुंचती है, तो कानून के तहत वो किस प्रकार से श्रमिक जो है अपने रिलीफ प्राप्त कर सकता है, कोर्ट के माध्यम से या अन्य कोई एजेंसीज के माध्यम से?
1: ऐसा है कि ये जो कानून लाया गया है, अगर इसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हुआ तो बिल्कुल श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, उन्हें बहुत बड़े स्तर पे लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उनके अगर किसी के साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि उसे दुविधा होती है या कोई परेशानी होती है, तो वो लेबर कोर्ट के माध्यम से कोर्ट तक पहुंच करके और अपने हितों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। साथ ही कई जो भी कंपनीज वगैरह है जो श्रमिकों को रख रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, तो अगर उनके अंदर 300+ वर्कर्स है तो उनके अंदर ऐसी कमिटी का गठन किया जाएगा जो उन श्रमिकों की बात को सुनती हो। अगर कोई बड़े स्तर पे हैं तो वो तो है ही है, अगर 300+ भी किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं तो ऐसी कम्युनिटी का गठन करना होगा उसके अंदर, जहां कोई भी मजदूर परेशान है, वो किसी भी कारण से परेशान है, तो वो वहां जाकर के अपनी बात बताए और वहां से अपनी दुविधा का हल करवा सके।
0: जी, तो जो महिला श्रमिक हैं, महिला वर्ग, उसके लिए विशेष प्रावधानों की हमेशा से आवश्यकता रही है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा एक बहुत बड़ी कंसर्न है, एक बहुत बड़ा विषय होता है कि भाई महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिले, तो उसको लेकर और इस कानून में क्या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं या कुछ परिवर्तन किए गए हैं?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम यह है कि पहले एक ही काम के लिए पुरुष को और महिला को अलग अलग वेतन दिया जाता था, लेकिन अब ये जो कानून इम्प्लीमेंट हुआ है इसके तहत महिला और पुरुष अगर एक ही कार्य को करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ महिला अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रही है तो उसको समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई महिला माँ है, उसके बच्चे का रख रखाव करना है, तो कंपनी के अंदर या जो भी जहां भी वह कार्य कर रही है तो वहां पे ऐसी व्यवस्था होगी जहां वह अपने बच्चे को आराम से रख सकती है, छोड़ सकती है और उसके बाद वह काम कर सकती है। और भी महिलाओं की हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कई खान व खनिज कारखानों में, वहां भी अगर वह कोई काम करती है तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित श्रमिकों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कार्यस्थल पे सेफ्टी का समुचित प्रबंध होना चाहिए, इन चीजों का भी ध्यान में रख करके ही इन कानूनों को लाया गया है।
0: जी, इसके अलावा जो खास तौर से यहाँ एक बात और मैं उठाना चाहूंगा कि जो आपके जैसे अधिवक्ता गण हैं, जो उनका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जो क्लाइंट है या पीड़ित है उसको कोर्ट से न्याय दिलवाने में, तो तो वो एक उनकी जागरूकता और उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है। तो वो लोगों को जागरूक भी करें, उनकी नज़र में कोई केस आए तो उसको सही

0: प्लेटफॉर्म दें और उस पर लेके आए। कुछ अगर कोई मजदूर नहीं, जानकारी के अभाव में, वित्तीय कठिनाई के अभाव में नहीं अपने अधिकारों को प्राप्त कर पा रहा है, तो उसको लेकर एक आपका क्या मतलब दृष्टिकोण है, और जो दूसरे भी जो अधिवक्ता वकील लोग हैं और जो भी जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप किस तरह की अपेक्षा करते हैं?
1: बिल्कुल सर, आपकी जो अपेक्षाएं हैं जो श्रमिकों की, उनको ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये आपके इंटरव्यू के अंदर आना उचित समझा और आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताकि श्रमिकों तक ये कानून से संबंधित जानकारी है वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में और सरलीकरण के रूप में उनको ये पता चल सके कि उनके भी अधिकार हैं, उनके अधिकारों के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून लाए जा चुके हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो वह बिल्कुल कोर्ट का रुख ले सकते हैं। और हर वकील का यही पॉजिटिव नेचर रहता है कि किसी भी श्रमिक का शोषण ना हो और उसके हितों की रक्षा की जा सके और उसे जितना लाभ दिलाया जा सके वो दिलाया जाए।
0: जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस जानकारी से जो भी हमारे श्रोता हैं और जो उनकी नजर में जो भी इस तरह के कोई पीड़ित लोग हों, श्रमिक वर्ग हो जो कि किसी भी तरह से प्रताड़ित या शोषित हो रहा हो, तो इन कानूनों की मदद से उसको न्याय मिल सकेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में इनसे मिलिए में महेंद्र सिंह राठौड़ एडवोकेट से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। आइए सुनते हैं ये गैर फिल्मी गजल।

अभी आपने सुनी ये गज़ल मेहदी हसन की आवाज़ में। लीजिए ये सुनिए अगली गज़ल, आवाज़ पंकज उधास की है।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, ये सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। ये है पहली पेशकश।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

फिल्म का नाम है चरस, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ आनंद बख्शी की भी आवाज़ है।

अभी आपने सुना फिल्म चरस का ये गाना। लीजिए गाने पुराने ज़माने के में, हम आपको अब सुनवाते हैं फिल्म वारिस का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

लीजिए सुनिए गाने नए गाने पुराने ज़माने के में। ये आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम आप आए बाहर आई का ये टाइटल सॉन्ग है।

रफ़ी साहब के गाए ऐसे गाने के साथ गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम बाजीराव मस्तानी।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

अभी आपने सुना ये गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, फिल्म दिल धड़कने दो से। लीजिए गाने नए तराने नए में सुनिए ये अगली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म यंगिस्तान से अरिजीत सिंह की आवाज में। लीजिए सुनिए ये अगला गाना फिल्म बादशाहों से।

सुखविंदर सिंह और मीका सिंह और साथियों की आवाज़ में यह है गाने नए तराने नए की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम शूट आउट एट लोखंडवा।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने

0: वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम
0: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: देखो प्यार में ऐसा नहीं करते।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल, हेलीपैड, सभास्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पशपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे पचपदरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। युवा मामलों के विभाग की ओर से हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना था। साथ ही उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना रहा। कार्यक्रम में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। प्रदेश में राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC 2026 के संबंध में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में प्रारूप समिति के सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर संभाग की जनसुनवाई की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आमजन से भी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई। इधर जयपुर कलेक्ट्रेट में 10 और 11 जुलाई को जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी जयपुर के सांभर में बरसा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चली। विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छाने की संभावना जताई है। जैसलमेर को छोड़कर समूचे प्रदेश के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 607 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इस साल 6 दिसंबर को होगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 1 और 2 मई को प्रस्तावित है। इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी नागौर का चिन्मी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही

0: राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे, किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है, और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है, झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है, और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें, लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहां रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसे ही गीत, वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौशमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है, मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है, लेकिन हाँ खतरा भी होता है। इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक न जाएं, समंदर के नज़दीक न जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी जमीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है, भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए।

विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला है गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहु बेगम

बहू बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंग ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है, मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गई, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

0: घर आ जा घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। जरा संक्षेप में लिखिए तो ज्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा, आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है, संगीतकार मदन मोहन। और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं,

घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां की बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार कुछ इन्होंने अलग भाषा में

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

0: तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले, कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।
1: ए

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उस

से ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं।

एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? बोला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता, उसमें सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी।
उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा।

पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए युववाणी कार्यक्रम।

सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखिए, हर नए सवेरे के साथ आगे बढ़ने का सुकून रखिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का हुनर जरूर रखिए। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी इस खूबसूरत सी शाम की साथी नेहा नारायण सोनी। दोस्तों, आज इस खूबसूरत सी शाम की शुरुआत करेंगे माय भारत पोर्टल की जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज के समय में युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का सही उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने माय भारत यानी कि मेरा युवा भारत पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। दोस्तों, माय भारत का पूरा नाम मेरा युवा भारत है। इस पोर्टल के माध्यम से 15 से 29 वर्ष तक के युवा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यहाँ स्वयं सेवा यानी कि वॉलंटियरिंग, कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी अभियानों से जुड़ने के अवसर भी मिलते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण करना बहुत आसान है। युवा अपने मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं। दोस्तों, माय भारत पोर्टल के बारे में मैं आपको और जानकारी साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये गाना।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक।

0: कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे माई भारत पोर्टल के बारे में। तो इस पोर्टल पर पंजीकरण करना बेहद आसान है। युवा अपने मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी प्राप्त कर उनमें भाग ले सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने पर डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों में उपयोगी हो सकते हैं। माय भारत युवाओं को केवल स्वयं सेवा का अवसर ही नहीं देता, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करता है। इससे युवाओं को नई सीख मिलती है और वह समाज की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। यदि आप भी अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, तो माय भारत पोर्टल आपके लिए एक बेहतरीन मंच है। आइए हम सभी सक्रिय नागरिक बने, समाज के प्रति मैं अपना योगदान दे और एक विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दोस्तों, यहाँ लेंगे हम एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: दोस्तों, अब चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सीखो और कमाओ योजना के बारे में। तो दोस्तों, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सीखो और कमाओ योजना चलाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरी के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार यानी कि डिमांड के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें सूचना प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएँ, खुदरा व्यापार, पर्यटन, आतिथ्य, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी एवं वेलनेस, ऑटोमोबाइल, प्लम्बिंग, विद्युत कार्य और अन्य तकनीकी व्यवसाय शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक ज्ञान के साथ व्यक्तिगत विकास, संचार कौशल और कार्यस्थल पर व्यवहार जैसी महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम की मैं आपको और जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सीखो और कमाओ योजना चलाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरी के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचि और बाजार की मांग यानी कि डिमांड के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, खुदरा व्यापार, पर्यटन, आतिथ्य, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमोबाइल, प्लम्बिंग, विद्युत कार्य और अन्य तकनीकी व्यवसाय

व्यवसाय शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्तिगत विकास, संचार कौशल और कार्यस्थल पर व्यवहार जैसी महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती है। योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। प्रशिक्षण पर पूरा होने के बाद उन्हें नौकरी प्राप्त करने या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने कौशल के बल पर बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। कौशल विकास के माध्यम से वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने हुनर को नई पहचान देना चाहते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसी कौशल विकास योजनाएं की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। सही प्रशिक्षण, मेहनत और लगन से सफलता की राह आसान बन सकती है।

दोस्तों, बारिश का मौसम चारों तरफ हरियाली और ठंडक लेकर आता है, जिससे मन खुश हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम के साथ हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है, पानी बचाने की। जब आसमान से बरसता हुआ पानी हमारी धरती को सरोबार करता है, तो उसे बेकार बहने देने के बजाय सृजना ही असली समझदारी है। बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से बहुत शुद्ध होता है। अगर हम सब मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, तो आने वाले गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत से आसानी से बचा जा सकता है। आप अपने घर की छत पर आने वाले पानी को पाइप के जरिए बड़े टैंक या भूमिगत गड्ढों में जमा कर सकते हैं। छोटे स्तर पर आप बाल्टी, टब या ड्रम रखकर भी इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप कपड़े धोने, पोछा लगाने, गाड़ियाँ साफ करने या पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह भी है दोस्तों कि बारिश के दौर में सिर्फ पानी बचाना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मैं नेहा नारायण सोनी इसी संदेश के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चिरमी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी प्यारी सखियों को सुनीता चौधरी का नी भरा नमस्कार। सखियों, हम आपसे मिलने आते हैं, जानकारियों का खजाना लेकर आते हैं, कुछ जरूरी स्वास्थ्य सुझाव होते हैं, वहीं आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए सौंदर्य टिप्स होते हैं, रसोई की बातें होती है, युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर होते हैं और जो भर्तियां निकल रही है वो भी बताई जाती हैं, सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं हम सभी के लाभ के लिए उनकी भी हम आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। बहुत सारी बातें होती है और इनके साथ ही साथ गानों की सौगात भी लेकर आते हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से हम आपसे दोस्ती निभाते हैं। सो क्यों, आज हम बात करेंगे उस वजह की जिसके कारण कि आप और हम मिल सके, रूबरू ना सही, आवाज को पहचान बनाकर आपके दिल तक दस्तक देते हैं। जी हाँ सखियों, बातों की इस मुलाकात का जरिया है रेडियो। अभी देखिए, हम आपके घर आए हैं, हम आपको नजर नहीं आ रहे और न ही आप हमें सुनते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप हमें सुन पा रही हैं, हम आपसे मिल पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र जरिया है ये रेडियो जो इस समय आपके घर में बज रहा है। और इसके अलावा मोबाइल फोन में भी अब तो ये सुविधाएं और ऐप हैं कि आप हमें सीधा अपने फोन में भी सुन सकती हैं, आप कहीं भी हो हम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? रेडियो के कारण।

बिल्कुल सर, क्यों, भारत में जब रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था वो साल था 1923 का, मुंबई और कोलकाता में ये शुरू हुआ था और रेडियो क्लब ने इनको शुरू किया था, यूं ही शौकिया प्रयासों से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 1927 में आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत मुंबई और कोलकाता में देश का पहला औपचारिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। सर क्यों, 1930 में सरकार ने इस सेवा को अपने हाथ में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की, और 1936 की जून में सखियों इस सेवा का नाम बदलकर AIR यानी एयर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और 1957 में सखियों ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी नाम दिया गया, और वर्तमान में प्रसार भारती के अधीन से क्यों आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है, जो कि विभिन्न भाषाओं और बोलियों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस महत्वपूर्ण शुरुआत जो की गई थी 1927 में, वो सक्यों हुई थी जुलाई के महीने में, इसीलिए हमने जुलाई की शुरुआत में आपके साथ में ये चीज साझा की है। कार्यक्रम जारी रहेगा, आपसे बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: सखियों, दुनिया भर में हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन इससे डेडिकेट किया गया है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। सखियों, इस दिवस को मनाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारक है। 20वीं सदी में सखियों विज्ञान का चमत्कार माना जाता था प्लास्टिक, और 21वीं सदी आते आते ये चमत्कार अभिशाप बन गया। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाएं और लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अपनी सुविधा और कम कीमतों के कारण सखियों प्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल में सर्वव्यापी हो गया है। ये बेहद ही नुकसानदायक है। हर साल सखियों लाखों टन प्लास्टिक कचरा फेंक दिया जाता है, और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो महासागरों में चला जाता है, और इस सारे प्रोसेस में वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। सखियों प्लास्टिक को नष्ट होने में 1000 साल जितना समय लग जाता है। इससे जो गैसेस निकलती हैं वो जानलेवा होती हैं। ये जल चक्र में बाधा डालने का काम भी करता है, जो कि बारिश को प्रभावित करती है। सखियों ये खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी प्रभावित करती है। इसके अलावा पशुओं के खाने से ये उनकी आंतों में अटक जाती है, जो कि मौत तक का कारण बन जाता है। सखियों साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाने की शुरुआत की गई। ये ग्लोबल स्तर पर की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाते हुए प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना है। इस दिन के द्वारा सखियों प्लास्टिक और डिस्पोजल ले जाने वाले उपकरणों के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है। हमारे देश में सरकार के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए सखियों अगर हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमेशा अपने साथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक की थैलियों में कोई भी सामान लेकर अपने घर पर नहीं आए और फिर उसके बाद उन प्लास्टिक की थैलियों को बाहर फेंक कर पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। कई बार होता है कि खाने पीने की बची हुई चीजें और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन्हें भी हम प्लास्टिक में बांधकर बाहर फेंक देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आवारा जो घूम रहे हैं, पशु हैं, जानवर हैं, वो उन्हें खा लेते हैं। तो वो एक तो खाना उनको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उससे पहले जिस प्लास्टिक में हमने फेंका है

वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो सखियों आज ये तय कर लें कि हम प्लास्टिक का जो उपयोग है वो नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे आपसे कि कम से कम करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल ही हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। और इस छोटे से संकल्प के साथ पर्यावरण संरक्षण की खूबसूरत शुरुआत और कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

सीक्यू कार्यक्रम में अब बात करेंगे पीएम के अल्पसंख्यकों के लिए चलाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 2015 में शुरू की गई नई मंजिल योजना के बारे में। सीक्यू, ये योजना 17 से 35 वर्ष के बीच के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए एक एकीकृत शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य से क्यों स्कूल से जो ड्रॉप आउट्स हैं और मदरसों में पढ़े जो युवा हैं उन्हें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ रोजगारात्मक कौशल भी प्रदान करना है। से क्यों इस योजना में अगर पात्रता की बात करें तो जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनसे संबंधित जो भी युवा हैं, जैसे कि हमने बात की 17 से 35 वर्ष के बीच जिनकी आयु है और इसके अलावा जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, वे सभी पात्र हैं। इसकी जो कुल सीटें हैं से क्यों इसके अंदर 30% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए और जो 5% सीटें हैं वो दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा सखियों ये 9 महीने से लेकर 12 महीने तक का गैर आवासीय कार्यक्रम है जिसमें कि गैर शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ 3 महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है और जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है सखियों तो इसके बाद युवाओं को नौकरी दिलाने में भी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। तो सखियों ये थी जानकारी आपको नई मंजिल योजना के बारे में जो कि पीएम मोदी का अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत शामिल ये योजना है। कार्यक्रम में हम रुकेंगे और सुनेंगे अगला खूबसूरत सा गीत।

से क्यों हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखाई दे। अगर हम बात करें लड़कियों की, महिलाओं की, हम सखियों की, तो बिल्कुल सखियों, हम सभी ये चाहते हैं कि हम खूबसूरत और गॉर्जियस दिखाई दें। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने श्रोताओं की, तो वो भी ज़रूर ये चाहते होंगे कि वो भी डैशिंग, हैंडसम और गुड लुकिंग दिखे ही दिखें। और इसके लिए हम करते क्या हैं? यूँ तो हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि जो हमारी प्राकृतिक खूबसूरती है वो ही और ज़्यादा निखर कर नज़र आए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कुछ खास मौकों पर कि हमें और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप का भी यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे हमारी जो रंगत होती है वो बदल जाती है, हमारी आंखों की खूबसूरती बढ़ जाती है, उसके अलावा जो हमारे होंठ है उनका रंग तो बदलता ही है, साथ ही साथ उन्हें हम थोड़ा सा अलग शेप भी दे पाते हैं। और ये सारी चीज़ें उसके साथ हेयर स्टाइल भी होती है, बालों का कलर भी होता है।

0: बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करने के बाद में हम अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ये भी होता है सखियों कि मेकअप प्रोडक्ट्स भी हम खरीदते भी रहते हैं, क्योंकि कई बार हमें कभी ऐसा यूज़ करना पड़ता है कि हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं है या फिर किसी से हम मेकअप करवा सकें इतना समय नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हम अपने पास रखते ही हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो अचानक से हम उनको यूज़ कर सकें। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम अक्सर जिसका इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर हम उसे खरीद रहे हैं, उसे ले रहे हैं, तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो फिर प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात ये है सखियों कि दूसरों को देखकर अगर हम मेकअप का सामान खरीदते हैं तो ये तो सरासर पैसों की बर्बादी है, और साथ ही साथ ये हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सखियों कि हम दो चार सखियां मिलकर शॉपिंग के लिए जाती हैं और अलग अलग तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक ने खरीदा तो उसको देखकर दूसरे ने भी ले लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की जो स्किन है सखियों, उसका जो रंग है, उसकी जो बनावट है यानी जो उसका टेक्सचर है, वो और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे खरीदारी करने की बजाय हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जबकि हम मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हों। किन बातों का ध्यान रखें, बिल्कुल हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: तो सखियों, सबसे पहले तो जब मेकअप प्रोडक्ट्स आप खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्किन टाइप कैसा है, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, ये ध्यान रख के उसके बाद ही आप प्रोडक्ट चुनें। जो फाउंडेशन आपकी सहेली या आपकी भाभी या आपकी ननद या आपकी बहन को सूट कर रहा है वही चीज़ आप पर भी अच्छी लगेगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी स्किन पर पैची या ख़राब भी लग सकता है। सखियों, फाउंडेशन या कंसीलर जो भी है वो कभी भी दूसरों की रंगत के हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। अपनी जो लाइन है उस पे लगाकर हमेशा ओरिजिनल धूप में शेड आपको मैच करके तब खरीदना चाहिए। अपनी जो अंडरटोन है यानी गर्म ठंडी या न्यूट्रल, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सखियों, अगर आप रोज़ हल्का मेकअप यूज़ करते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार बेसिक और अच्छे किट से शुरुआत करनी चाहिए। सस्ते या लुभावने ऑफर्स के चक्कर में ख़राब या नकली प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। सखियों, मार्केट में बहुत से ब्रांड मौजूद हैं जो कि कम दाम में अच्छी क्वालिटी देते हैं। ट्रेंडिंग सामान जैसे कि जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बताते रहते हैं ये ले लीजिए वो ले लीजिए, इन्हें देखकर खरीदने की बजाय अपने इस्तेमाल का सामान आपको खरीदना चाहिए। अपनी जरूरत के सामान को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों की देखा देखी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि सखियों आफ्टर ऑल स्किन आपकी है तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप यूज करना चाहिए। क्योंकि खराब करने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन उसको ठीक करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हमारी बातों को रोकने का वक्त हो चला है और इस समय ये टाइम हो गया है एक और गाना सुनने का।

जिंदगी में हासिल हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं, जिंदगी में हासिल हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपनी सखी सुनीता चौधरी को, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: खेल खिलाड़ी नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,000

0: 236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

धरती फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया अजनबी फिल्म का ये गीत।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में सुनिए कोहिनूर लंगा का गाया ये लोक गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कोहिनूर लंगा पार्टी के गाए कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालोतरा के पचपदरा में देश का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। वे जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाना है। इसे विस्तृत और सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे स्वदेशी विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार की उड़े देश का आम नागरिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ ही जोधपुर रिंग रोड द्वितीय खंड पर 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। वे 1,000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल होने वाले समारोह की तैयारियों के जायजे के लिए बालोतरा पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे जोधपुर पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ लाएगी और राजस्थान में कहीं लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
0: गौरतलब है कि पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले 21 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पहले रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार HPCL रिफाइनरी से सालाना 9 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाना है। यहाँ के तेल को भारत सहित दुनिया भर के 40 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की अद्वितीय इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिफाइनरी से 135,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के साथ जोधपुर ने भी आधारभूत प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों कल होने वाले जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर कहा कि इससे समूचे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा व्यापार हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि नई सुविधा शुरू होने के 2 दिनों के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है, क्योंकि इससे आधार नंबर रखने वाले लोग ये जान पाते हैं कि उनके आधार का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहला जत्था आज सुबह पहलगांव और बालटाल मार्गों से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी तय तिथि की बारी पर ही यात्रा में शामिल हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विधायी बहसों के साथ उनके समाधान पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थाओं में बदलाव ला रहे हैं।
4: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर दी गई छूट 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध की छूट को 5 जुलाई से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिणी पूर्वी जिलों से आगे बढ़ते हुए उत्तरी इलाकों को भी भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार करीब हफ्ते भर की देरी से आए मॉनसूनी बादल बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में जमकर बरसे। इस दौरान सर्वाधिक 84 मिलीमीटर बारिश जयपुर के सांभर में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी एक हफ्ते तक मॉनसून की गतिविधियां चरम पर रहने की संभावना है।
5: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीते एक महीने में राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के 10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान के तहत काजरी ने 186 कार्यक्रम आयोजित कर समन्वित उर्वरकों, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीट प्रबंधन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों से साझा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी एक हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्री गंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ हुआ। चूनावड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने भाग लिया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, वहीं ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। कार्यक्रम में लोगों को योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला परिवहन कार्यालय में इनवर्ड प्रणाली बंद कर दी गई है। अब वाहन सारथी पोर्टल से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आमजन खुद या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिले में जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और कम पानी में अधिक उत्पादन की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा बड़ी संख्या में चालान भी बनवाए गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत काम शुरू किए जा रहे हैं। योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला परिषद के अनुसार इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
6: जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट हासिल किए और उपयोगी रन भी बनाए। उनकी उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल रहा और उनके स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कभी कभी घर घर चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाने तक सीमित माने जाने वाले डाक विभाग ने अब रोजगार और स्वरोजगार का नया जरिया शुरू किया है। इसके तहत श्रीगंगानगर मंडल की ओर से फ्रेंचाइजी योजना 2.0 युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आम नागरिक डाक विभाग के साथ साझेदारी कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन करते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे। श्रीगंगानगर के डाक अधीक्षक अजय चुग ने बताया कि फ्रेंचाइजी योजना 2.0 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं को स्वरोजगार का मंच भी उपलब्ध होगा और डाक विभाग रोजगार की नई उम्मीद भी घर घर तक पहुंचा सकेगा। बठिंडा श्रीगंगानगर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बार इस रूट से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गाड़ी संचालन शुरू होने पर यात्रियों में प्रसन्नता छा गई। इस ट्रेन का श्रीगंगानगर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलने के बाद श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि इससे बठिंडा में पावर बदलने का झंझट खत्म होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की मांग और लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा रेल सेवा को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के सीमावर्ती इस जिले का दक्षिण भारत से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस निर्णय से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और चिकित्सा कार्यों के लिए जाने वाले यात्रियों को अब अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता नसरूपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नुवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कह्यो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज फैला। अमरनाथ यात्रा शुरू भी प्रधानमंत्री जातरुआ 5 संकल्प लेवन रियरच कीनी।

0: ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੀ ਨਹਿਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਾਗੈ ਨੂਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਲਾ। ਮਾਣਾ ਖਬਰ ਨਵੀਸ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਆਮ ਆਏ ਰੇਲਵੇ ਸੜਕ ਊਰਜਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਾਏ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਰਾਸੂਬਿਤਾਓਂ ਜੁੜੀ ਨਹਿਰੀ ਨਹਿਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इनो पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन करेला। 480 करोड़ रुपए रा खर्चो बनाई जो नुओ टर्मिनल भवन सालाना 20 लाख मुसाफिरां री आवाजाही ने ध्यान रखता था का डिजाइन करी चियो है। श्री मोदी जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत ही करेला। ई योजना रो मकसद देश में हवाई जुड़ाव ने और बेहतर बनावनो है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ बीच रेलां री पटरियां दौड़ी बनावन री परियोजना सागे जोधपुर रिंग रोड रा दूजा हिस्सा माथे 4 लेन री सड़क बनावन रा काम री शुरुआत करेला। वह 1,000 मेगावाट बोतारी बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ही जनता ने सौंपेला। प्रधानमंत्री रा राज्य रा काल प्रस्तावित दौरा न ध्यान रखता थका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो पचपदरा रिफाइनरी रो दौरो कैर काल फेवन वाला जलसारी तैयारियां रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनो पहले जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो के पचपदरा माए तेल साफ करण रा कारखाना हो प्रदेश रो विकास और तेज वेला।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ आइडिया और राजस्थान में तो ही लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा समेत न्यारा न्यारा आला अहलकार आज जोधपुर और बालोतरा रो दौरो कीनो। ध्यानजोग है कि प्रधानमंत्री पहली 21 अप्रैल 2026 ने पचपदरा माए HPCL राजस्थान रिफाइनरी रो उद्घाटन करने वाला हा, पर उद्घाटन रा एक दिन पहले रिफाइनरी रा एक हिस्सा माए लाई लाग जावन रे कारण कार्यक्रम टाल दियो चियो हो। करीब 80,000 करोड़ रुपया रा खर्च बनाई जा तेल साफ करन रा ई कारखाना माए सालाना 9 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। वो तेल देश माए पूर्ति सागे दुनिया रा 40 देशा माए बेचो जावेला। ई कारखाना माए बनवा वाला दूजा छोटा मोटा उत्पादा माथे आधारित सहायक उद्योग लगावन सारू राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करी चियो है। इनु कारोबारी सीधा रिफाइनरियों कच्चो माल ले सकेला। तेल साफ करन रा ई कारखानाओं 1,35,000 बत्ता लोगां ने सीधा या परोक्ष रूप काम धंधो मिलेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 साल माए देश सागे जोधपुर माए बुनियादी बरकत हुई है। वह श्री मोदी रा हाथ हूँ काल जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल न जनता न सौंपण रा कार्यक्रम बाबत कहो कि इनो पूरा मारवाड़ और राज्य रा आतुणी हलका रो हवाई संपर्क बधेला और हलका रा विकास न नुवी ऊंचाई मिलेला।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऐप जरिए आधार नंबर सागे मुफ्त ईमेल अपडेट रो सुबितो सरू कीनो है। वो सुबितो 1 जुलाई 6 महीना सारू मुहैया कराई चियो है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रे मुजब नुओ सुबितो सरू वन रा 2 दिन में आई 2,00,000 बत्ता

0: लोग ईमेल पतो अपडेट करती नो है। मंत्रालय रे मुजब आधार माय ईमेल जोड़ती बगत संबंधित ईमेल माथे जानकारी मिले है। इनु साफ कोई सागे हिफाजत रो एक और लेवल मिले है। संबंधित आधार नंबर वाला मारा आधार रो जी काम माय इस्तेमाल करियो चाहियो है मारी ठा कर सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। इस साल री अमरनाथ यात्रा आज शुरू होगी। पहलो जत्थो आज समारे पहलगांव और बालटाल रागे लाऊ पवित्र गुफा सारू रवाना भियो। यात्रुआ रा सुबिता सारू दुनियों गेला माथे जरूरी व्यवस्थावा करीची है। सरकार यात्रुआ ने सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रे मुजब आप अपनी तय तिथि माथे ही सफर शुरू करन री राय दिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ री यात्रा सारू जावन वाला ने शुभकामनावा दिनी है। यात्रुआ सारू लिख्योड़ा एक कागज माए प्रधानमंत्री हर साल वेवन वाली अमरनाथ यात्रा ने देश री आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एका माए एक शाश्वत अध्याय बताई। प्रधानमंत्री यात्रुआओं अमरनाथ यात्रा रे दौरान साफ सफाई रखण, हिफाजती और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करण, यात्रा खर्च रो कम 10% वोकल फॉर लोकल पहल रा तहत स्थानीय सामान री खरीदी माथे खर्च कर स्थानीय माली व्यवस्था ने बढ़ावो देवण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बढ़ावो देवण सारू राखी रे मौके भाई बहन ने एक पौधो उपहार रा तौरों देवण, ईमानदारियों कर्तव्यों की पालना कर और विकसित भारत बनावण माँ योगदान देर राष्ट्र प्रथम री भावना ने आगे बढ़ावण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री भरोसो जतायो के अमरनाथ यात्रा आस्था सांस्कृतिक एका और सेवा रा मूल्यां ने मजबूत करती रहवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकाओं लोकतांत्रिक परंपरावां ने मजबूत करण और हल्का सागे राज्य री उम्मीदारी नुमाइंदगी करण बाबत कहो है। वे आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा रा नुआ चुनी ज्या सदस्यों रा दो दिन रा आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बिरला सदस्यों विधायी बहस सागे वाना समाधान माथे विचार करण सारू कहो। लोकसभा अध्यक्ष कहो के मौजूदा डिजिटल तकनीक रा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थावां में बदलाव ला रहा है।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: प्रदेश में काल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रा तहत न्यारी न्यारी सरकारी सेवावां सारू चुनी ज्या नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया जावेला। जिला मुख्यालय माथे रख्या जावण वाला कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और महकमा रा अहलकार नुआ कर्मचारियों ने नौकरी लागण रा कागज देवेला। इस दौरान बालोतरा में भेवण वाला प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रोई सीधो प्रसारण करियो जावेला। प्रदेश रा उत्तराध हल्का माए चौमासारी बिरखा स्वरूप है की है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हड़ौती हल्का रा जिला माए जोरदार में बरसियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि इन दौरान सबों 32-84 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिला रा सांभर माए दर्ज करी ची। श्री शर्मा बतायो कि आवता एक हफ्ता ताई चौमासारी बिरखा चालती रहवण रा आसार है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस अवेलेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: राज्य सरकार कर्मचारियां और अहलकारां ना तबादला माथा छूट री मियाद 10 जुलाई ताई बधा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ई बारा माय हुकम जारी करती ना है। आखिर माय खास समाचार एकर फेरो सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माय देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रो उद्घाटन करण सागे नूवी परियोजनावा रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज फैला। अमरनाथ यात्रा सरूफी प्रधानमंत्री जात्रुआं 5 संकल्प लेवन री अरज कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता एक हफ्ता ताई चोखो में बरस बारा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: गजबी है
1: काशी भी है
0: काशा हुई के रखा महाजोग काई ठा पड़े। और बाजरो हाजरो देखा ना तो सांगरी ज्यादा लगड़ी बाजरो होनो चाहिए
1: तो आगती पागती बाजरी भाई लोग
0: बाजरी भी उड़ी है काशा खेता में बाजरी हुई जना तो मूंग ए भी हुई साथ में क्यों बरसात भी ना बाजरी पाके कोनी
1: जमी पानी के मेल केड़ो कहीं
0: ठीक है बढ़िया है। ट्यूबवेल वाला पानी है कोनी
1: ट्यूबवेल वाला कोनी
0: 400-500 पर है खारा पानी
1: चार घंटे ट्यूबवेल वाला है नहीं रह
0: जाते है 500 पर चाले भारी पानी है ज्यादा कर तो टकाई है पालक की
1: अच्छा पाली की खेती है नहीं
0: खेती
1: तो है। पालक बचे थे भाव
0: नहीं
1: कोनी
0: नहीं नहीं हमारे ट्यूबवेल है कोनी ने पड़ोस में है आज ज्यादा कर दो
1: नहीं थे जो खाली बारानी खेती कर
0: बारानी खेती में
1: तो अब आज यहाँ बरसात होगी तो अब मान लो रात का उजे बालक बात है बाकी खेतो बाई तेड़े काल तो बोले
0: खेत बाई ते काल सुबह बोले निनान काटो ने
1: तो निनान बचे घर घर कहीं काटो बढ़िया करो
0: ज्यादा कर तो घर घर कहीं यार एक दो कोई बढ़िया हड़िया पास पड़ोस में कर ले कोई पैसे चाल जी
1: बरसा करो पा दे
0: दे
1: तो कितना बीघा में है मूंग
0: 10-1 बीघा में ऐसा
1: 10-1 बीघा में और तारबंदी भी बढ़िया खरीदी ने आप रहे
0: तो तारबंदी तो अब जैसे गवर्नमेंट योजना है ना
1: अच्छा तो योजना का फायदा उठा
0: योजना का फायदा है जैसे वो जाली तार वो फार्म लगा
1: वो
0: लगेड़ो पास हो गया
1: अच्छा कत्ता रुपया मिलिया कहीं
0: रुपया ताल पे शायद मिलिया नहीं
1: अच्छा मिले को तार बंदी पहली कर ली थे
0: हाँ,
1: अब बार तो घर का रुपया बांध ले
0: अब बार घर का रुपया लगाई और कृषि पर्यवेक्षण की आपके पास हो गई
1: अच्छा तो उजे जनवा फायदो मिल जाए इन मायने जो अनुदान कितो कहीं रहे लग
0: इनमें तो गवर्नमेंट हिसाब तो 48,000 बोल रहे हैं अब मिली किता किता नहीं मिली
1: तो था के ई जाली में किता कहीं लग गया
0: इनमें हवा के लाख रुपया लागा
1: जन 48,000 आप समझ लेंगे भाई आधो लगे टगे आधो
0: हाँ आधो
1: 50%
0: 50% आपा ने अनुदान गवर्नमेंट सहायता मिल जी 50% आपा करू करा देना आपा खेत कब्जे हुई को एकदम बढ़िया
1: चारा कानी वियोड़ी है
0: हां चारा पर एकदम
1: तो उजाड़ काई रोजड़ा को है कोई उजाड़ काई आवे
0: उजाड़ ज्यादा का रोजड़ा को है घर सुरना को है
1: और बेडोरा भी आवे
0: हां बेबी आवे साथ में
1: आपने योजना की पूरी ठा है आई बात है
0: योजना को तो एफएम रेडियो सुनते हैं या आकाशवाणी जयपुर में कोई दूरदर्शन पर आवे या अखबार में कोई न्यूज आवे पत्तो चाल जावे
1: जुड़े उड़ा होते कुल
0: हाँ कुल मिला जरूर है गाँव में भी मीटिंग भी हुए जना लोग बताया करे कि भाई आई योजना है इनको भाई दो आप ले
1: तो राजश्याम जी कई जगह जावा जन तो बे नाडिया आडिया बनाए रखे फार्म पोंडर बे थे कणी याडो फार्म
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो अब ऐसे जमी एक बीघा जमीन में बनावा जन वो फार्म पोंड बने आप 10 बीघा जमीन में पर तो पानी आओ कोन जन भी ऐसी आप बनाई को
1: नहीं जी बिरखा जोरदार हो जे जन तो 8-10 बीघा को पानी तो बीघे के माय काशा हो जे
0: हां बरसात ज्यादा हुए जन वो काम आवे कम बरसात में वो कहीं पौंड काम
1: भाई लारली वार की बात करा लारली साल तो बिरखा बढ़िया हुई नहीं
0: लारली साल तो गजब हुई 10-10-15 दिन पानी खेता में रेगो है जी
1: बी टाइम अगर वो अपने तालाब बनाएड़ो रहे नाडियो बनाएड़ो रहे तो
0: वो तालाब बनोड़ो तो सियालू फसल ले जगी जीरो है कोई सब बढ़िया
1: तो भी दिमाग में कौन आवे कि भाई बनावा
0: दिमाग में आवे है लेकिन देखा गवर्नमेंट खर्चो की तो कहीं आवे है वो हाल लगाई को
1: फार्म भरो
0: हाँ फार्म भरा जना बठा पड़ी में
1: तो फार्म या कहीं बाजार लियार भरो हिदा मोबाइल आजकल इंटरनेट ऑनलाइन
0: अब तो कोई देख अखबार में कोई बातचीत कर ई मित्र पर जा ई मित्र कोई बात करा ना पा जन बे
1: बता तो ऑनलाइन
0: ऑनलाइन फार्म भरी जी और घर ली तो आल अनुभव नहीं है
1: अनुभव को नहीं
0: हाँ।
1: तो अब जिया थे निनान निनान कर ले हो हाँ। तो पच काई काम रहे खाली रुखाली रहे
0: बस रुखाली कोई काम है कोई वा कचरो पूस वो पाड़ नो खेत में कोई काम है ज्यादा कर
1: मूंगा के मायने बस रोग किसे किसे लगे
0: मूंगा में तो ज्यादा कर लटल रोग है
1: लटवे
0: हाँ
1: वो तो कणा भी आकर लट
0: बात तो अब जैसे फली गिरी हाँ। फली छेदक भी टाइम बहुत लागे ज्यादा कर
1: अच्छा तो बा है जे नुकसान फूक
0: बा नुकसान है जो कोई तो छोटो मोटो कोई स्प्रे करना जनावा
1: स्प्रे पचे लोगाण लाई रोजना डंगडाळो ई दिखे अंग्रेजी करो थई
0: वो अंग्रेजी भी हिसाब भी है देखा देख हुई ज्यादा कर तो
1: काई फायदो वे अंग्रेजी हूं के जमीन नुकसान
0: अबे जमीन ने गणी नुकसान हुए
1: था है तने
0: था है आ तो लेकिन अबे काई देखा देख है जो बा एक पड़ोस में किस स्प्रे वो यार स्प्रे करना
1: तो स्प्रे पचे ले रहो जन बाजार तो हर नागोरी है था।
0: हाँ नागोरों लिया पक्को बिल तो वो लिया कटाई
1: पक्को बिल ले
0: हाँ
1: कहीं फायदो है भी
0: अब फायदो तो कहीं है भी फसल पर कोई की बुरो प्रभाव पड़े जन वो काम के लिए
1: नुकसान हो जे हाँ। वो कार नहीं करे
0: हाँ
1: जन अगला ना ओलबो दे
0: सको ओलबो दे सका और आई है मेन
1: भाई हर जानो है जो ले सको
0: भी हाँ मेन बिल्कुल ये
1: अच्छा जी टाइम छिड़काव उड़काव करो भी टाइम कहीं ध्यान रखो सावधान रखो
0: टाइम सावधान आई है थोड़ा सुबह करा तो जो थोड़ा सी नाश्ता वास्तो की करो
1: भूखे पेट नहीं करना
0: और मुंह पर कोई बांध कर थोड़ा आतम की सावधानी ये रखनी
1: भाई, आतम पे लियो और मुंडो ढक लियो। हां आंख आंख चश्मा
0: लगा लियो, एक हवा छड़का नहीं चलना, सामने नहीं छड़कनी
1: भाई, खुद के शरीर में आवे,
0: खुद के शरीर नहीं आनी।
1: अच्छा तो जी हाँ, मान लो आज छिड़काव कर दियो तो बचे यहाँ अपन देखा मायने कई गुआर भी बैठ रहे देख ला, काचरा तोड़ लिया कर लिया, तो बस हाथों हाथी तोड़ो की तो
0: कम कम 7 दिन को रेस्ट करना है, 7 दिन तक खेत में नहीं जाना ज्यादा कर दो, क्यों दवा इस पर ऐसी ही होती है।
1: अच्छा तो स्प्रे जी हाँ करियो और भी मत बिरका उगी हुए तो पचे
0: पचे भी को 24 घंटा तो बिरका नहीं होनी, 24 घंटा बाद में वो असर तो जाएगा ज्यादा कर 24 घंटा तो रहना।
1: तो कई लोग तो आजकल जे भी खेती में जोर देने लगा छिड़काव है, जो कोई बोई देसी छिड़काव करना, देखो गोबर है गोमूत्र आकड़ा दतुरा नीम बोलिया अगली मिलार बनाऊं डूगा, थेकने की कोशिश
0: नहीं नहीं कोशिश नहीं करी जा तुझे
1: तो आज थेको नहीं मैं रेडियो होना अखबार ही पढ़ना, तो बिंग में जोर आजकल जे भी खेती में दे
0: वो तो घर के मतलब पशु सुर ज्यादा रखते हैं जना वो काम आवे, जे भी थोड़ा नीम बोलिया और नीम डाल काम करते हैं बिलन जना बीती आल प्रयोग कर देखिया नहीं
1: देखियो कौन हाल हाँ। है कोई दूजा करे जका या कने जान देखियो
0: नहीं देखियो नहीं आस पड़ोस में देखियो कौन ज्यादा करे
1: हाल करियो कौन
0: करियो कौन हां
1: थई है जको अंग्रेजी रखो हाँ। तो खाद तो है जको देसी छिड़कता वाला
0: हां खाद ज्यादा कर तो गराला ही है पर जिप्सम डालते हैं ज्यादा कर खड्डी
1: ना को है
0: खड़ी
1: तो खड्डी हूं काई सुधार हो
0: खड्डी हूं जमीन सुधार हो जे पानी सोस हो जे और दलन और जगह तिलन फसल है नी इस लाभकारी ज्यादा करे।
1: अच्छा एक मायने दाला आले तेल
0: हां ज्यादा करे नी उपजो उजे मिट्टी बा और पानी चूं से जमी जनो पानी चूं से जनो सब चीज हो
1: तो खड्डी है जो पच कटू मंगाओ
0: खड्डी तो जैसे भी डाकोरी पेनो आसी की
1: भाई एक तो सीधी टोलियां आवे एक है जगह आजकल बे कट्टा आन लागा
0: बे कट्टा तो आवे है हम तो ज्यादा कर टोलियां डालते हैं
1: टोलियां सुधार
0: हो जाए बीघा में एक टोली डाल देना
1: आजकल के भी टोलियां मायने घणो रे थोड़ा आन लागो और आज 10 साल पहली है जो घणो चोको आ
0: पहली 10 साल पहली वो आता नहीं बे कम लोग यूज करता आले लोग यूज करे ने जन अब आवे जो कोई हाथ के आम खेत में कार किस चीज करी आ करी जकी ना नहीं जाता
1: जके ना को और खाद थे को देसी ना का तो किया के सीधो ना को सड़ा गला तैयार करो
0: नहीं
1: करो?
0: वो तो जैसे 12 महीने ते रहेगा 12 महीने बाद में ना के जो खाद काम करे।
1: अच्छा
0: तो तोड़न तालो खाद वो कार करे कोनी
1: कार कोनी करे तो इनके मायने भी है जिया दे इसी दो एक तो धड़मा ना क्यों एक खाडो करियो रखियो जी खाद ना कर ऊपर कोई दूजो पूछ नाक दियो थोड़ा पानी गाल दियो इया बना रही है तैयार कोन करो
0: वो तो करे ते छोटो सियो खड्डा है बी में डाल दो रे कहीं बरसात को पानी भी विकट हो साथ में और भी इसमें कहीं छोटे मोटे केंचुआ हेंचुआ वो जीवाणु सड़के गल जाते
1: हैं। अच्छा थोड़ी सी कार हल्लो करे
0: थोड़ा सी कार हल्लो करे
1: तो कत्ता साल हूँ पाचो नाकनो पड़े एक खेत में जी
0: एक खेत में 4 साल हूँ 5 साल हूँ नाका नहीं फिर वो जना वो कहीं बढ़िया रेखा
1: फिर वो नाकनो
0: फिर वो नाकनो पड़े
1: तो दावदन रखो
0: नहीं दावदन बार तो है नहीं भैंस का है नहीं।
1: अच्छा रखो मोल लिया पड़े
0: हाँ मोल लिया पड़े
1: कहीं फटाक
0: 4,000-5,000 है डेरी व्यवसाय करे नी वांगन वो मिल जाए वो खाद एकदम तुरंत बंटा को बढ़िया खाद आया करे भी खाद में ज्यादा कर वो घास फूस की कचरो को नहीं आवे खाली और चौकी तूड़ी उड़ी कर बेलंग बंटा दीवा वो काम आ जावे
1: हाँ। तो वो नाकिया बचे 3-4 साल है जी
0: तीन चार साल जरूरत कौन रहे पाँच नाक
1: तो अब जी हाँ मूंगा की फसल आए जी था निनाण मात आएगी
0: हाँ।
1: और दूजी कोई फसल है जी जिया तिल है थे को भी तिलन भी है तो
0: नहीं,
1: भाई
0: है कोई मूंग में साथ में टेढ़ा का तिल है
1: टेढ़ा का तो भाई
0: टेढ़ा का पौड़ा तिल है
1: तो बे किया कहीं आलू बराबर ही
0: मूंग के बराबर चाल रही हाल तो बड़ी है बेबी
1: अबार तो हाल तो चाचे आठ आठ पान करिया है तो हाँ। इनके मायने तो कोई थान रोग
0: अबार तो रोग कुछ नहीं है बरसात की ज्यादा जरूरत है बरसात हो जन सब काम हो जाएगा
1: तो बरसात तो अबार देखो कई दिन पहले अखबार में भी आई और फोना में भी बतावे की आप जो पिछ में राजस्थान है एक मायने अब की वो अलनोरी को प्रभाव है जो की थोड़ी बिर का कम वे लागे
0: अनुमान तो बतावे है मौसम विभाग वाले बतावे कम बतावे लेकिन अब सांवरा के ऊपर मेहर हो जना तो सब उजाए
1: चार साल का तो जन हाल
0: छोटा है थोड़ी सी पानी नहीं मिल रही है खारा पानी है ज्यादा करना मीठा पानी भी ना
1: मीठो पानी कौन तो
0: बरसात बरसात में पन्ना भी ज्यादा कर पचे कम बदी
1: पानी की व्यवस्था जी कम है,
0: हाँ,
1: बात है?
0: पानी की व्यवस्था कम है
1: तो 4-4 साल का उगार एक दो महीने इमली वगैरह ए भी
0: हाँ,
1: दिखे
0: ए भी है साथ
1: तो नर्सरी में ले जाए ए कहीं टाल ले आ के बे अर्जी में जिया देवे
0: नहीं नहीं बे ग्राफ्टेड हिसाब में देवे बे लेके आया
1: ग्राफ्टेड
0: हां
1: इंग मायने देखा के नींबू ले रहा हूं बे छोटा छोटा के नींबू लागे
0: नींबू भी लगौड़ा है और हाँ। अनार भी लगौड़ा है, गिरे थे लागे आल फल नहीं बन रहे।
1: अनार अगला हाथ ही भैया?
0: हाँ नहीं, ये तो दो दो साल का, डेढ़ साल का भैया है।
1: तो तीन साल उतके नहीं फसल देने लाग जाए?
0: फसल देने जमी केर पानी की मेल हुए, पानी नहीं है, चक्कर है।

0: तो पानी वो ही नहीं जन सब कुछ हुए।
1: मीठो पानी
0: हाँ।
1: तो अबार जी बिरखा आवे ता के छत को पानी है जो पचे उतारो
0: छत को पानी डायरेक्ट ओद में शिफ्ट कर रहे हैं।
1: कता मोटा मोटा ओद बनाए
0: ओद 8-9 टैंकर का है
1: तो ओ तो बचे
0: बरसात को पानी
1: पीउन
0: वास्ते कोई नाम दोन काम लेना और फाल छत को पानी फालतू नहीं जानो पूरे ओद
1: फालतू कौन जावे ना
0: फालतू नहीं जानो पूरे शिफ्ट ओद में होनो।
1: बरसात चाहे सरकार भी जोर देवे
0: हां सरकार भी आई जोर देवे उन नाले बरसात वो चाहे चौमासे वो चाहे सियाले माउट वो पूरे छत को पानी है नहीं वो डाइट ओद में शिफ्ट होनो
1: शिफ्ट होनो। और कई जगह देखा नाडी तला हुए तो बंग मायने भी रहे तो वो रिस रिस जाए तो जमीन में
0: वो जाए जमीन में
1: भाई पानी को जो इस तरह ऊंचो अजी बड़ो
0: ऊंचो अजी
1: तो थारे आगती पागती नाडी तालाब अटे
0: हां नाडी है तालाब है हमारे पास में है
1: तो पीने को बस पानी बटू ही
0: वो भी पानी है पीने को ज्यादा करता हमारे होद है घर में
1: भाई होद हल जे
0: होद में हल जे नहीं तो टैंकर है पास में नाडा है बढ़िया साफ सुथरा है पानी का
1: साफ सुथरा है
0: एकदम साफ सुथरा दूसरी गंदगी नहीं है।
1: अच्छा गायां भैंसियां वगैरह है जगह
0: गायां तो भैंसियां तो जावे थे तो कोने एकदम है साफ सुथरा और टैंकर है घर गांव संबंधी बंद गुड़ा है।
1: अच्छा अच्छा बंद ही हो रहा है
0: हाँ कोई दाने दपाना में दूर दरफा ले जाए आप इशा में स्तर पर ले जाए।
1: तो अब आने वाला दिनाक मायने आज ये मुंगारी फसल है आप रे
0: हाँ।
1: तो इनके मायने कत्ती बरसात की जरूरत रही
0: अबे दो बरसात तीन बरसात हांतरी हुए बरसात जना तो बकार करे अबे थोड़ी थोड़ी दो दे अंगल तो बरसात नु कार करे
1: भाई हांतरी को मतलब था कहीं खेत ब्रिज ना
0: खेत ब्रिज ना बीबी अंगल बरसात हुए नहीं बीबी पच्ची पच्ची अंगल बरसात हुए जन हांतरी मानी जी अब दो अंगल तीन अंगल बरसात जी दो दिन माते खांस ले
1: भाई आ तो खांस ले थे निना कार्ड ले
0: तीस कर ले
1: पच्चे जगो हगड़ो खेत भरी जे
0: हाँ पच हगड़ो खेत भरी जे नहीं पच वो कार करे मुंगा ने पच वो तीस को
1: नहीं पच्चे एक बड़े रखे ता जी एक में और जी
0: एक में लास्ट में वो एक नहीं हुए बाद राम जी मेर है
1: हाँ, जी टाइम भाई फाल लाग जे फलियां बने
0: फाल फली बन जे हांतरी बढ़िया बी टाइम एक बरसात हांती जोरदार रुजे नहीं जना पा मूंग बढ़िया बन जे
1: बीघे के मायने उतार को तो
0: हां बीघा में है 1.5-2 के आसपास
1: 2-1 क्विंटल
0: लूजे 2-1 क्विंटल बीघा बन जे
1: कई कई जगह देखा 3 क्विंटल लूजे पे जमी का फर्क है
0: जमी को और थोड़ी सी माटी का फर्क है
1: काली माटी
0: हाँ ज्यादा कर
1: काली आपके भी माटी आ है जगह दिखे तो काली काली है
0: दिखे है काली काली एक फुट ऊपर चौकी है नीचे कंकर आ गया ज्यादा कर
1: अच्छा बिंगे कारण है
0: जो कंकर मोड़ में घिसिया आ जमी है नहीं बी से आपकी रेल बन रही है
1: तो खाली मूंगा को भी दूजी जकी भी फसल बाबा को भी उतार लगभग तो ही रहे
0: वो सेम ही उतार है लगभग तो ज्यादा कर दो और ये मेन कारण
1: तो गांव में टागती पागती ज्यादातर मूंग ही
0: ज्यादातर मूंग ही है एलम बाजरी भी है गंवार भी है जो फिर भी फसल है नहीं आपके एशिया में भाई
1: तो पानी है जो आपके कम है आई बात
0: हाँ, मेन पानी की समस्या पानी है कम
1: खाली बारानी खेती
0: बारानी खेती है
1: वाह सवार श्याम जी आज आप मेलर इतनी बंतल करी आपने घणो घणो धन्यवाद
0: आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भाई देखो मेवड़ लो बियड़ो हैर राधेश्याम जी री बात भी आप तई पूगती भी है कि खेती है जकी इन बिरखों जकी चोखी वे जाए तो आज आप तई पूगतो करियो हाँ रामलाल सुथार रो गाड़ो ओ भजन।

तो भेणर राम लाल सुथार गेड़ो भजन आप तई वियो पूगतो और बाजार भावी पांदड़ी मार तई पूगती हुई। तो आज नागौर मंडी में मूंगा की बोली 5,500-7,600 रुपये प्रति क्विंटल लगी, काला तिल 9,000-9,500, तो सफेद तिली 10,000-11,000 तई बिकी। नागौर मंडी में जवार 4,500-5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी, तो गंवार की बोली 5,000-5,600 तई लगी। तारा मेरो 5,500-5,700, रायडम जकम 40% फेट वेबिंग भाव 7,400 और जीरो 17,000-21,500, मेथी 5,700-6,050, इसबगोल 9,000-13,500, सौंप 7,000-12,800 तो बिकी, तो चीना 5,000-5,325, असाड़ियों नागौर मंडी में 5,800-6,000 तो बिकियो, तो सिंधी सो 6,000-7,600 रुपये प्रति क्विंटल बिकियो। और बात चिता तो करनी चाहवा पर टेम सू बंजोड़ा हर काम टेम मात वेजन चोखो लागे। तो आज रे खेती बाड़ी रो टेम अभी वेरियो पूरो धीरो आप विष्णु भाई ने सी करा राम राम।

आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द

0: लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी,
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी,
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?

0: हाँ, निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है ना?
2: मामा जी,
3: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियां?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे। जी,
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
3: अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है। इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
3: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
3: निधि, ये पांडुलिपियां ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
3: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ, बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा,
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा,
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
3: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
3: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
3: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी,

0: और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही।
2: तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं।
3: नमस्कार।
4: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
5: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
4: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
5: जी,
4: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
5: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
4: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
6: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया।

0: あれ。
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
1: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत में कुछ कव्वालियाँ। पहले सुनिए हंसते जख्म फिल्म की ये कव्वाली, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों ने।
1: हाय

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वाली आकाशवाणी नागौर से। लीजिए अब सुनिए गाने नए जमाने के फिल्म संगीत के अंतर्गत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ओ रोमियो फिल्म से। इसे गाया है जावेद अली और मधुवंती बागची ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये था ओ रोमियो फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए आज़ाद फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाज़।

अब प्रोग्राम के आखिर में ये सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत। इसे गाया है विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और साथियों ने।

ये था भूत बंगला फिल्म का गीत, इसे गाया था विशाल मिश्रा और नक्श अजीज और साथियों ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम गाने नए ज़माने के अब ख़त्म हुआ। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय

0: की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांसद

0: में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9 बजे हैं। सुगम संगीत के प्रोग्राम में लीजिए सुनिए चंद गजलें। आज की फनकार हैं स्वाति नाटेकर।

सुगम संगीत के प्रोग्राम में आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं स्वाति नाटेकर की गाई कुछ गजलें, और यह है प्रोग्राम की अगली और आखिरी गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और के बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थी, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थी, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा।

0: वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।